क्योंकि सिख की तो भावना ही है कि मेरा घर बने ना बने पर सब तो पहला मेरे गुरु का घर बनना चाहिए। मेरे घर भावें एक वक्त की रोटी पके ना पके मेरे बाबे दे दर से 24 घंटे अठे पैर लंगर चलना चाहिए। मेनू तन ढक्कन नू कीमती कपड़े मिल ना मिल पर जेड़ा बाबे नानक दे दर से आ जाए वो तन तो नगन ना जाए ओदे तन ढक्कन वास्ते बत्तर दिते जा। भीम चंद का मन कच्ची सी साहब ने जवाब दे दिता ते भीम चंद ने एक तैया कर लिया ते जिन्नी देर तक गुरु गोबिंद सिंह तो यह चीजा नहीं खोदा उन्नी देर तक मैं इन चैन न टिक नहीं देना। एक घटना यह थी ते दूसरी घटना जो भीम चंद गया सिख विद्वान डॉक्टर करतार सिंह लिखते ने वेख्या भी गुरु गोबिंद सिंह के दर से भाई जैते वर्गे बैठे इतने भाई बचित्र सिंह वर्गे बैठे इतने जिन्हों शूदर कहा जाता सी गुरु के कोल बैठ के लंगर छकन ते भीम चंद ने नफरत भरे शब्द कहे सन गुरु गोबिंद सिंह तुसी खत्री हो असी राजपूत हां जेड़े आ तुसी नीवी जातां वाले शूदर इकट्ठे कीते ने इन्हां नूं की पता के बादशाहियां की हुंदियां ने साडे खून विच बादशाही है ये सारे बाहर कढ़ दे ते असी तेरे सिख बनन नूं तैयार हां क्योंकि जेड़े सारी जिंदगी काम नीवे करदे रहे सरदार बन सकते ने। उत्थे रतन सिंह पंगू ने एक बचन बड़ा सोहना कहा गुरु गोबिंद सिंह ने मुखातब होकर भीम चंद नूं कहा कि सजना के चेते रखी इन गरीब सिंगन को देऊं पातशाही ये याद करे हमरी गुरियाई। दूसरा बचन क्या सी जाकी जा जात गोत कुल माही सरदारी ना पई कदाही तू कहना नीच ने नहीं इन्हीं को सरदार बनाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ए नीवे नहीं भीम चंद तरफ उठिया भी जेड़े कल तक साडे घर कम करते सन वो अज घोड़िया की सवारी करते ने केवल जंग का मकसद यह नहीं सी के केवल यह चीजा वह तड़प उठिया कि जिन्हों लोगों वेद मंत्र पढ़न की मनाई सी वह अज गुरबाणी का कीर्तन से कथा तय करते सन जिन्हों लोगों के घर कभी विह समय ढोलकी नहीं सी वजदी गुलाम सन वह रणजीत नगारे से चोटा पै मारते सन जिन्हां दे घरां विच कदी उच्ची साह नहीं सी लै दिता जांदा उन्हां दे सिर ते अज फर्रे पै झुलदे सन। मन दे उत्ते इन्नी कु ईरखा दी अग बली कि इन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं गुरू है चुकदा है कल नूं साडी रियासत काबू ना करन इस तों पहलां गुरु गोबिंद सिंह नूं राह विचों साफ कर दिता जाए। कारण सिर्फ इह किहा कि चीजां नहीं दित्तियां। उधर गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब दी धरती ते टिके ते दो रियासतां सन बड़ियां नेड़े। मैं थोड़ा जिहा इतिहासिक पक्ष लै रहा एक शहर है हिमाचल विच नाहन इहनू अज भी शब्द उत्थे वरदे नाहन इतिहासिक गुरुद्वारा इहनू उस वक्त सिरमौर भी कहा जाता सी। सिरमौर ते श्रीनगर नाहन का राजा सी मेदनी प्रकाश श्रीनगर का राजा सी फतेह शाह। फतेह शाह की लड़की की मंगनी हो गई सी भीम चंद के लड़के नाल। फतेह शाह की राम राय नाल बड़ी सांझ सी राम राय की दिल्ली दरबार भी सी ते धक्के नाल फतेह शाह ने मेदनी प्रकाश का जिहड़ा इलाका सी उहनू अपने कब्जे विच लै लिया। मेदनी प्रकाश सोचदा एक पासे भीम चंद नाल इहदी रिश्तेदारी दूसरे पासे दिल्ली दरबार विच इहदी सांझ तीजा राम राय वर्गा करामाती इहदे पिट ते मेरे गरीब का तां दुनिया विच कोई है नहीं। जदों चिंता ने इहनू खा लिया फिर किसी ने सलाह दी सजना जे इन्हां सारिआं नाल कोई टक्कर लै सकदा है ते आनंदपुर का वासी गुरु गोबिंद राय ओदे चरण अपने घर विच पवा। जिथे गुरु गोबिंद राय खलो गया दुनिया की कोई ताकत नहीं कि ओदे नाल आ के टक्कर लै सके। तवज्जो दिया जे साहब आनंदपुर साहब ने ते राजे फतेह शाह दे नाल जिहदी ईरखा लड़ाई आपसी मेदनी प्रकाश दी इन्हें पत्रकार भेज के क्या गुरु गोबिंद सिंह मेरा इलाका बड़ा सोहना रमणीक है ते जे कुछ दिन तुसी आ के चरण पाओ ते मेरी धरती दे भाग जाग पैण। शायद ओदी पत्रकार नूं सुन के 500 सिख अपने नाल लै परिवार नूं लिया ते अंदर पहुंचे ने ते मेदनी प्रकाश ने दुख रोया महाराज मेरा जीना हराम कर दिता फतेह शाह ने। ते साहब ने श्रीनगर तो फतेह शाह नूं बुलाया ते राजा मेदनी प्रकाश दोनों नूं इकट्ठे बिठा के आपस विच सुलाह करा दिती। फतेह शाह ने जिस इलाके ते कब्जा कीता सी उहने मेदनी प्रकाश दा ओ इलाका वापस कर दिता। दोनों ने गुरु की रज के सेवा की थी।
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਲੰਦਰੀ ਤੱਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਕਲੰਦਰੀ ਦਰ ਤੇ ਜਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਇਹ 199 ਛੰਦ ਤੇ 22 199 ਬੰਦ ਤੇ 22 ਛੰਦ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਪਰਣਵੋ ਆਦਿ ਏਕੰਕਾਰਾ ਜਸਲ ਮਈਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰੀ। ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਰਾਵਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰੇ। 33 ਸਵਈਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ਼ਬਾਸੁਰ, 20 ਕਬਿੱਤ ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਦ ਗਦਾ ਵਿਭੂਤਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਲੰਦਰੀ ਤੱਟ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਣੇ ਚੁਣ ਮਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਣੇ ਚੁਣ ਮਾਰੇ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਗਾਰ ਵਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਮਰ ਚੰਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਣੇ ਚੁਣ ਮਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਰੀਸ਼ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪਦਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਛ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਸਨ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਘਿਆਰ ਸਨ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਖੂਨਖਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਤ ਫਤਿਹ ਸ਼ੰਭ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋਹ ਪਰਾ ਹਮ ਸ਼ੋ ਬਿਨ ਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਬਰਾਤ ਗਈ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਡੌਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ। ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸ਼ ਦਵਾਈ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਦੂਈ ਦਾ ਹੌਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ 500 ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ, ਨਿਜ਼ਾਬਤ ਖਾਨ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ, ਉਮਰ ਖਾਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ, ਇਹ 5 ਜਰਨੈਲ ਤੇ 500 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੜੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਪਠਾਣ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ 500 ਪਠਾਣ ਤੇ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਨਰਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਠੰਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੰਨਣੀ,
500 उदासी नागा साधु उथे पहुंच गया। साहब गुरु गोबिंद सिंह जदों पौंटा साहब टिके, भीम चंद दे पुत्तर दी बरात निकलनी सी पौंटा साहब दे घाट तों, ते भीम चंद ने बंगार के एक गल कही, कहिंदा गुरु चार कु बंदे कठे करके किले बनाई बैठा है, मैं पुत्र दी बरात उदों लै के फतेह शाह दे घर टुकना जदों गुरु गोबिंद सिंह दे पौंटे नूं उजाड़ के मैं तहत नहत करांगा ते गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं जमलोक पहुंचा देवांगा। उहदा मतलब सी कि बिरादरी मेरी इकट्ठी होई है, राजे मेरे इकट्ठे होए ने, लंघदियां लंघदियां पौंटे नूं उजाड़ के गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म कर देंगा। साहब नूं खबर मिल गई, हजूर ने उस घाट ते अपने सिख तैनात कर दिते, ते भीम चंद ने पत्रिका भेजी, मैं पौंटे नेड़े निकलना, ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने जे तू शुद्ध भावना नाल निकलदा तेनू जी आया भी कहिंदा, पर जेड़ी मन विच तू बिरती लैके आया जितना मर्जी जोर ला लै, मैं तेरा एक बंदा भी इस घाट तो निकल नहीं देना। उस वक्त हजारां दी तादाद विच पहाड़िए राजे, ते कमाल दी गल, पहली जंग गुरु गोबिंद सिंह दी होई भी उहनां नाल जिन्हां दी खातर गुरु गोबिंद सिंह दा दादा गुरु हरगोबिंद साहिब इन्हां राजपूत राजिआं नूं ग्वालियर दे किले विचों मुक्त करा के लाया। कमाल दी गल, पहली जंग भी उहनां नाल होई जिन्हां दी खातर तिलक जन्यू राखा प्रभ दाका किन्नो बड़ो कलू मैं साका, जिन्हें एडा वड्डा साका कर दिता, बापू दा सिर दे दिता, पहली जंग लड़न वास्ते उह लोक इकट्ठे हो के आ गए। साहिब गुरु गोबिंद सिंह ने कहा निकलन नहीं देना, भीम चंद अंदरों डर गया, कईयां ने कहा हल्ला करो, किसी ने कहा चलो रहन दिओ ए, किते खुशी दा वेला है नुकसान ना हो जाए। फिर इन्हें अखीर ते अपना एक पम्मा क्रोध असी पढ़ने अक्सर इतिहास विच, उन्हू भेजिया कहिंदा तुसी मैनू तां नहीं बरात तां नहीं, घट्टो घट मेरे पुत्र नूं निकलन दिओ, अजमेर चंद नूं नहीं ते साहे वाला दिन निकल जाणा। साहब ने कहा ठीक है, परवाने केवल 5-7 बंदे उहदे नाल होणगे। अजमेर चंद ते ओ परोत वजीर साहब दे चरणा विच आए, ते हजूर ने उत्थे गल कही सी, बेटा चेते रखी, शायद तेरे बापू दे मन विच नफरत होवे कि असी जान बुझ के वैर कमाने पया, बिल्कुल नहीं, चेते रख साडे घर दा इक सिद्धांत, कदी भी किसे नूं पहलां डराउंदे नहीं, ते जिहड़ा डराण दी धमकी दा उहदे तों कदी असी डरदे नहीं हुंदे, तू आए तू जा बेशक निकल। साहब ने असीस दिती, अजमेर चंद इथों निकलिया। ध्यान दिया जे इधरों अजमेर चंद चला गया, भीम चंद का पुत्र फतेह शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपनी बच्ची की शादी भी सदा पत्र भेजे। महाराज नूं पता है कि पहाड़ी आने ने कोई ना कोई शरारत जरूर करनगे। साहब ने दीवान नंद चंद अपने सिख दया राम परोत ते 10-11 सिख होर भेजे, 1,00,000 रुपये के करीब सगर बनता है जिहड़ा फतेह शाह की धीली पे तोरिया। कह लगे आनू दियो, पर नाल क्या सुचेत रहो, भीम चंद भी पहुंच गया, लड़की की शादी हो गई। ते अक्सर आप देखते हैं अज भी पिंडा विच जो लोगों की एक समाजिक रीत है कि बच्ची की डोली उठन तो पहला जिन्हें जिन्हें सगन देना वो इकट्ठे होंगे। आए राजे महाराजे इकट्ठे होए, परोत ने पुकार के कहा किसे राजे वालों 5,000, किसे वालों 2,000, किसे वालों हद 10,000, अखीर च उन्हें कहा गुरु गोबिंद सिंह वालों 1,00,000 रुपये का सगन। भीम चंद तड़ कहिंदा फतेह शाह जेड़ा मेरे रस्ते नूं रोकदा है उन्हूं तू अपनी धी दे व्याह भी शामिल किया है, साडी भरे दरबार विच नक वड्डी गई, एक फकीर टिब्बे ते रहण वाला इन्ना सगन भेजे। कहिंदा जे तू गुरु गोबिंद सिंह का सगन लैणा है ते मैं तेरी धी का डोला नहीं लैके जाना, डोला तेरी धी का तेरे घर रहेगा। भीम चंद इको दम गुस्से विच उठ के तुर पिया। दीवान नंद चंद समझ गया भी ये शरारती बंदा है, खेड करेगा, इन्ना सियाणा सिख उन्हें श्रीनगर दे विच नहीं रहिश रखी, बाहर मैदान विच रखी जिधर पौंटा साहिब वाला रस्ता पैंदा सी। भीम चंद नूं मनान गए, कहिंदा पहली गल फतेह शाह ये गुरु का तू सगन लैना नहीं, आपां सिखां नूं कुट के धक्के नाल खोणा है, जे उस तरह लै लिया तो फिर तो गल कोई ना बनी, सिखां नूं कुट मार के खोणा है कि गुरु गोबिंद सिंह तक सुनिया तो पहुंचे कि भीम चंद किन्नी कु ताकत है। पहली गल इन्हां सिखां नूं कुटना पएगा, दूसरा मैं तेरी बच्ची की डोली तां चुकांगा, मैं हुण वापस इस तरह नहीं जाना, पौंटा साहिब नूं उजाड़ना है,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: याद करिए सबे पर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज अकाल जो
1: जाग रहे हैं
0: श्री गुरु ग्रंथ प्रकाश।

अगे संतां नूं प्रचार कीता उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।

0: संत शब्द नहीं वर्तना चाहता, पर ता कहना चाहता है क्योंकि उसकी पहचान हो जाए। बाबा नार सिंह ने मलेशिया दे विच दूजी बारी हरिमंदर साहब बनाया सी। तुसी अज भी babek.com पाके देखो तुहानू पता लग जाएगा मलेशिया च बने पहली बारी। फिर उस तो बाद चीमा पिंड दे विच बने हरिमंदर साहब। लेकिन साड़ी कौम इतनी कु गर्क चुकी है, यह ना सच नू सच कह के राजी है, ना किसी को तमन्ना है कि असी कूड़ नू कूड़ ते कह सकीए, जिहड़ी गल नहीं हो सकती नहीं हो सकती। डिठे सबे थाम नहीं तुत जिहा, बदो पुरख बधाते ता तू सोया। नहीं इस गल ते पहरा दे दे। उस वेले गुरु के सिख इशनान करके अमृतसर साहब की पवित्र धरती तो जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जे केवल बैठन नाल गल होवे ते मुड़ के असी उस बेरी की कदर क्यों करिए, उत्थे तो गुरु इक्को दिन बैठा सी। मुड़ के रीठियां की कदर क्यों करिए, उत्थे गुरु इक्को दिन बैठा सी, चला गया उत्थों ते। पर नहीं, जिथे जिथे भाई गुरुदास जी आखते ने जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। असी ते गुरु नूं जान ही ना सके। गरीब नवाज की शोह नाल प्राप्त होए श्री सचखंड श्री हरिमंदर साहब। उथों बोता सिंह ते गरजा सिंह दोवें जने इशनान करके वापस आ रहे ने, ते रातों रात इशनान करके आए। उन्हां कोल थोड़ा जा वक्त बच गया। उन्हां सोचिया भी किन्ना चंगा होवे जे सवेर हुंदिया तक आपां कुछ पैंदा तय कर लईए, किते ऐसा ना होवे दिन चल जाए ते मुड़के दिने उन्हां नूं लुके रहना पैंदा सी। ते उह आ गए इत्थे नूर दीन दी सरां तरन तारण साहिब दे लागे। कदे वक्त मिलिया नूर दीन दी सरां की चीज है यह फिर सांझ पावांगा। सरहंद दीआं इट्टां इसे नूर दीन दी सरां नाल जुड़ियां होईआं ने। इहने सरहंद च पट्ठे लाए सन ते इहने उत्थों इट्टां मंगवाईआं सन। गुरु अर्जन पातशाह ने इट्टां मंगवाईआं सन। गुरु अर्जन पातशाह दी इट्टां इहने नूर दीन ने चुके सरां दे विच ला लईआं सन। मुड़ के बघेल सिंह ने वापस लिया के इट्टां तरन तारण साहिब लाईआं सन। यह गल वखरी है, कदे फिर सही समझ सीमा बेनती कर रहा सां। नूर दीन की सरां तरन तारण साहिब दे लागे, नूर दीन की सरां तो 1.5 किलोमीटर लंबे। ये दोवें जने सिख बेचारे झाड़ा विच बैठे ने, सरकड़े विच बैठे ने। तो उस वेले दिन है, हालांकि दिन है, सवेर का वक्त हो चल है। उस वेले दो राही उत्थों दी लंघे ते उन्हें वेख्या भी इत्थे थोड़ी सरकड़ा हिल रहा है ते झाड़ झूंड हिल रहे। वह दोवें जने डर गए, डरे हुए बचन कहने कहने वेखी यार कि सिख ना होव। दूजा कह लगे भी सिख कि सिख का नामो निशान नहीं, तू इस गलों ना डर। कोई जानवर होगा वैसे इतने बैठा, तू फिक्र ना कर, तू इस गलों ना डर। हालांकि वह जानवर तो नहीं सन डरते जने सिखा तो डरते सन। उन्हें बचन आखे कह लगे सिख नहीं हो सकता। उस वेले दूजा पूछा सिख क्यों नहीं हो सकता, कहने लगे सिखा का खुरा खोज मिटा दिता, कदे किसी के घरों मिल सकती है तो सिख की तस्वीर मिल सकती है, दो मत कुछ नहीं। बोता सिंह गरजा सिंह ने उस वेले बाहर निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ के बचन किया भी तुम असं कुछ नहीं कहने, पर सू दसो भी लोगों च की गल फैल गई। उन्होंने पूछया तो उन्होंने दसिया भी इस वे लोगों च गल फैल गई भी कोई सिख दुनिया में नहीं है, सिख खत्म कर दिते ने। जकरिया खां ने दोनों गुरु के सूरमिया ने उथों सोटे तोड़े, सोटे तोड़ के सड़क के विचकार खलो गए। सड़क के विचकार खलो के उन्होंने नाका ला लिया ते एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है बोता सिंह गरजा सिंह ने जकरिया खां नू, आम छोटे मोटे बंदे ने चिट्ठी नहीं लिखी, जकरिया खां नू एक चिट्ठी लिखी है। समय ने पंद मुका लिया, यह मेरा आदत नहीं है भी मैं अगे जावा, इथों ही लड़ी आप गल शुरू करांगे। भुला चुका दी खिमा प्यार नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवास कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम अपन बिरद रखाबो।

खुश हो सकते ने, जेड़े किसी ने पुत्तां नूं मरवा के अपने पुत्तां दी सुख भाल सकते ने, जेड़े किसी ना बुरा करके अपने जीवन दा चंगा समझ सकते ने, यह उन्हां गदारां विचों गदार सन। इन्हां दी मीटिंग बुलाई ज़करिया खान ने। ज़करिया खान ने अगे एक सवाल रखिया बड़ा प्यारा, कहन लगे मैनूं इस गल दी समझ नहीं लगदी भई ना मैं इन्हां नूं किथे खाण जोगा छड्डिया है, ना इन्हां नूं किते पहनण जोगा छड्डिया है, ना इन्हां नूं किते रहण जोगा छड्डिया है, लेकिन मैं हैरान है सिख फिर भी किवें जिउंदे ने, इह जिउंदे काहदे आसरे ने, मैनूं इस गल दी समझ नहीं लगी। यह सवाल ज़करिया खां उन्हां गदारां अगे करदा है। हुण उस वेले हर भगत निरंजनीए यूं फिर कही, तारू सिंह एक पुला अही। उस वेले भाई तारू सिंह दे बारे विच उस हर भगत निरंजनीए ने एक गदार ने उदो चुगली लाई, कहन लगे सजना तू जिन्ना मर्जी कहर कर रहा, तेरे कहर करिया कुछ भी नहीं बनना। वह पुछण लगे क्यों, कहन लगे इस इलाके विच पुले पिंड दा एक भाई तारू सिंह है, ओ इन्हां नूं प्रशादा पानी पहुंचाउंदा है, खेती करदा है, खेती करें बोहाला भरे। कहन लगे खेती भी करदा, तुहाडा टैक्स भी दिंदा है, इस गल च कोई दो रामा नहीं, पर लेकिन एक गल चेता रखियो, जिन्ना भी हो सके ओ अपने घर लई घट रखदा है, अपने घर लई जितना भी संकोच हो सके उतने संकोच नाल जीवन गुजारदा है, पर जिहड़ा कुछ बाकी बचदा है ना उह सिखां दे कोल पहुंचा दिंदा है, इसलिए भुखे तां नहीं मर रहे। हुण ज़करिया खान ने मन विच विचार बना ली भी किन्ना चंगा होवे जे मैं सब तो पहला इहो जे मिलवर्तनियां दा अंत करा। हुण उहदा कहर टुटिया, हुण उहदा मन इस पासे तुरिया। इक गल चेता रख, जे ज़करिया खान ने अपने जीवन काल अंदर करीब 10,000 तो उत्ते सिखां दा कतल करवाया, इतना बड़ा पापी सी, 10,000 सिखां दा कतल करवाया, इह अज तां सानूं थोड़े जे लगदे होणगे पर उदों कौम दी गिणती बड़ी थोड़ी सी, उहनां समयां च किन्ना कु हाल होंदा होएगा। इह जी जिंदगी दे इह आखरी कतल ने। इहने फिर कोशिश कीती भी किसे तरह मैं उस भाई तारू सिंह नूं पकड़ के लैके आवां, बंदे भेजे ने, इह हर भगत निरंजनीआं भी पापी नाल गया है, ते इहनां ने जाके भाई तारू सिंह जी होरां नूं गिरफ्तार कर लिया। अफरीन ऐसी अमावा दे, धन ने माता, अपने पुत्र नू जदों गिरफ्तार करके लेके तोड़ के चले ने। कुछ एक विद्वाना दी ऐसी भी है, सतवीर सिंह ने लिखे, पर सतवीर सिंह दी लिखता में एक बड़ी बड़ी मुश्किल आउंदी है, ओ किसे अपनी बहुती बारी ए नहीं दस दे भी ए पिछोकड़ मैं केड़ी किताब चो लिया, ता करके सतवीर सिंह दी मुश्किल बनदी। वैसे सतवीर सिंह ने लिखिया है भई उस वेले दी भैण नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, पर कुछ एक लोगों ने उहदे बदले सोना दे के उहनूं छुड़ा लिया सी, क्योंकि भाई तारू सिंह दा अपने इलाके च मिलवर्तन बहुत चंगा सी। गल वक्री जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा, जदों उहनूं भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करके लैके चले, मां दरवाजे कोल खलोती है, मां दी अख विच एक भी अथरू नहीं आया, मां ने अपने पुत दी पिठ थापड़ी, कहन लगी पुत वे तेरे कोलों कोई घर दे हालात छुपे होए नहीं, तैनू कली कली गल दा पता है, तेरा बापू छोटी उम्रे चढ़ाई कर गया सी, मैं जिवें किवें अपनी जिंदगी दे दिन कटदी रही, ते हरेक मां नू इको एक आस हुंदी कल मेरा पुत वड्डा होवेगा ते मैं सुख चैन दी रोटी खावांगी, पर इस वेले जालम ने वक्त इहो जिहा बना दिता, तू मां दीआं अखां दे सामने गिरफ्तार होके चले आ, पुत वे एक गल मेरी अज तू पल्ले बन लमी, तेरी मां किसे दे घर भांडे मांज लवेगी, पर चेता रखी ए सिर उठा के तुरेगी, पुत वे चेता रखी तेरी मां किसे दे घर गोहा कूड़ा कर लेगी,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਮਾਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ,

गया, वो लड़की मर गई, पर उस लड़की ने मरण का दोष जस्सा सिंह ते लाया गया भी इन्हें कुड़ी मार दिती, अपनी लड़की मार दिती। सिखी सिद्धांतों के अनुसार जेड़ा कुड़ी मार है उदे नाल वर्तन की सिखी आग्या नहीं दिंदी। ए भावे अजोके समय च तो बहुत वड्डा एक असी पाप कर रहे हैं, एक गल वक्री, बहुत सचेत होने की लोड़ है। उदो जस्सा सिंह उत्ते एक दोष लग्या, पर एक गल चेता रखियो पुरातन किसी भी ग्रंथ विचों उस वेले दे जिहड़े लिखारी ने खुश वक्त राए इतिहादिक जिहड़े प्रसिद्ध लिखारी ने, मैं बहुती गल लंबी ना करा, उन्होंने लोगों ने कित जिक्र नहीं किया भी इन्हें जस्सा सिंह ने कुड़ी मारी सी, पर इतिहास विच दे नां ते दोष लगता है या परंपरा बासे दे नां ते दोष लगता है या एक मूंह तो ही गल चली आ रही है भी जस्सा सिंह दे उत्ते एक दोष लगता है भी इन्हें कुड़ी मार दिती सी अपनी, जिदे करके सिखा ने इन पंथ विचों छेक दिता सी, ते उदो पंथ विचों छेकिया होने करके ए जाके अदीना बेग की फौज विच भर्ती हो गया। दूजा विचार ए है भी उस वेले अदीना बेग ने कह दिता सी भी मैनू सिखां दी मदद की लोड़ है, ते ओ सिखां दी भर्ती हो गई, उहदे विच जस्सा सिंह अपने नाल कुछ बंदे लेके भर्ती हो गया सी। जदों ओ भर्ती होया तां उहनां दिनां दे विच ही 1748 विच ही इक भाणा फिर वरत गया, ओह इह वरतिया भई उदों अदीना बेग ने ते कुछ एक होर लोगों ने इकट्ठे होके मीर मन्नू दे हुक्म दे अनुसार कुछ ही दिन संधि रह सकी है। याद रखियो मैं एक बार फिर पिछोकड़ बोलन लगा, 1733 विच भी एक बार संधि हुई सी, उदों जकरिया खां सी, शाहबाद सुबेक सिंह ओ नवाबी लेके आया सी, उदों भी ए नवाबी 4 महीने सिर्फ चली सी, संधि फिर टुट गई सी। हुण दोबारे फिर उस मीर मन्नू दे नाल अदीना बेग दे नाल दीवान कौड़ा मल दे नाल संधि होई, पर ए संधि भी थोड़े दिन ही रह सकी, फिर दोबारे टुट गई। उन्होंने इकट्ठे होके राम रौनी, हजे आपां कल ही बनाई है ए रामगढ़ किला, जिहदे तो नाम रामगढ़िया बनिया जस्सा सिंह दा नाम। रौनी दा अर्थ हुंदा चार दीवारी। राम रौनी अमृतसर साहब तो शहीदां दे वाले पासे रामसर वाले पासे एक मील दे उत्ते 2 किलोमीटर की दूरी उत्ते बनी सी। इस नूं आके उन्होंने घेरा पा लिया, जदों इन्हू आके घेरा पाया तो घेरा कई दिन चल गया। अंदर गुरु के सिखां दा प्रबंध इन्ना नहीं सी ते जिहदे विचों गुरु के सिख शहीद होण लग पए, अंदर करीब कोई भुख दे कारण, कई बारी उन्हें हथियारां दे कारण, कई बारी जंग दे कारण, उदो सिख जिहड़े सन ना ओह सोच के जाया करदे सन भी असीं 5 सिख बाहर निकल लगे हैं ते 5 विचों लड़ांगे, कुछ ना कुछ मरांगे, ते 5 विचों 2-3 जिहड़े बाकी बचणगे, 1-2 बाकी बचणगे, कुछ राशन लैके अंदर आ जाणगे। जे उस वेले 5 विचों 3 भी शहीद हो गए ते बाकी 2 राशन लैके आ गए, अंदरलियां नूं जिंदगी मिल जाएगी, ये सोच के जाया करदे सन। ते उस वेले गुरु के सिखां दे उत्ते इस तरह कहर वरतन लग पिया, तां उदों देखो सिक्खी दा बीज अंदर होवे, जस्सा सिंह अदीना बेग दे नाल घेरा पाई बैठा, हालांकि उन्हूं पता लग्या भी अंदर इवें गुरु की सिक्खी दा कान हो रहा है। उस वेले जस्सा सिंह दे अंदर दर्द जागिया, उन्हें अपने वालों एक चिट्ठी लिख के ते तीर विच परो के उन्हें एक चिट्ठी अंदर भेजी तीर दे राही। अंदर खालसे ने वह चिट्ठी पढ़ी गुरु के सिखा ने, भाई जस्सा सिंह यह चाहता है भाई जे मैनू पंथ अपने विच शामिल कर लवे तो इस वेले मैं तुहाडी मदद करन लई तैयार हां, मेरे कोलों अपने भरावां दा खून नहीं जे हुंदा, मेरे कोलों अपने भरावां ते तलवार नहीं चलदी, मेरे कोलों अपने भरावां दा खून डुलदा वेखिया नहीं जे जांदा, अज किते सिखी विच भावना पैदा हो जाए। अज जिहड़ा सिख सिख नूं मारन ते तुरिया होया है ते किवें करियो, जे अज शायद जस्सा सिंह दे जीवन विचों आपां इक उदाहरण अपने जीवन विच धारण करिए, शायद अज भी उजड़ी जांदी सिखी जिहड़ी है ना बहुती लहरां बहरां वाली हो जाएगी ते सिख दा दुश्मन सिख ना बने। जस्सा सिंह ने एक चिट्ठी अंदर भेजी, पंथ ने उहदे ते विचार कीती ते पंथ ने वापसी ले ली जस्सा सिंह दी, ते उस वेले जस्सा सिंह ने अदीना बेग ते उन्हां दी फौज दे विरुद्ध होके लड़े ते आखर उन्हां नूं भाजना पाईआं गुरु के सिख,
ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

गुरु स्वारियों जी अशीषां बख्शो प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दियां विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा करना उन्हें 1800 तक आप विचार कर सकी। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल समझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगला की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उहियो लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोल हारन लग पए। खुशामद है ही इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह के इहो जिहे लोगां ने दूजी गल भरा मारू जंग उह मैं तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया हां। एक दूजे तो एक दूजे दी मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाना यह उन्होंने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जब इस तरह के हालात बन गए तो इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करा, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है, दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है उह लोक सन जिहड़े उह नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पए, शराबां पीण लग पए, जिहड़ी सिक्खी दे विच कदाचित भी कबूल नहीं है उन्हां औगुणां नूं उन्होंने धारण कर लिया, बर्बादी दे राह तुर पए। छोटी जी एक बेनती विच होर करदे हां, अहमद शाह अब्दाली की गल आपां कई बारी विचार चुके। 23 अक्तूबर 1772 नूं उमर गया, तैमूर शाह उस 1793 तक जिंदा रहा है, पर उन्हें बहुतियां लड़ाइया सिखां नाल नहीं लड़िया। वो एक ही गल कहिंदा सी मेरे बापू ने लड़ के की खट लिया, पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान यह तैमूर शाह का छोटा पुत है, इहने पन विच भावना बनाई। इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इहने कुछ एक हमले किते, जदों इह तख्त ते बैठिया तेरे हमले किते, 1795 विच हमला किया, 1796 विच हमला किया, 1798 विच हमला किया, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। इसे नूं इह सम्मन बुरज दे विच बैठे नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मंगारिया सी। इह उह जो तैमूर शाह दा पुत्तर हुण इह भी जिहड़ा सी उह किनारा कर गया। मुड़ के इन्हां दे झगड़े आपस विच शुरू हो गए,
ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1793 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ 1799 ਚ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰੀ

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उह चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जी।

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश हुंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके

0: हे सच्चे पातशाह, हे महाराज, ये तुहाडा ही पंथ है। हुण पंथ दी कटिया हो रही है, भाव कट वड हो रही है, पंथ हुण हार रहा है। पहला नहीं सी दिखिया महाराज, कहिंदे जद असी बचन कीता सी उदों तुहानूं याद नहीं आए असी। यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की, जे छत्र छाया छड दीए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन।
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई, कौन खता इनके घर पाए।
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सातों, क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे, क्यों नहीं साडी मदद करदे।
1: जेकर सिंह है अवगनियारे, तौ आपके जगत उचारे।
0: जे सिंह अवगनियारे ने तां भी जग ने तां होर कुछ नहीं कहना, जग तां फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनों दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने
1: ठहरें राज कौन कर करने
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किमा
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरतें वरतारा जग जथा
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल हुण इत्थों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाएगो तो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल उस सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ

0: ये पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने बचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इक्को ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच। अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे ते बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई। किहने कहा? महाराज जी ने कहा। इह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए? इह कहण दा की फायदा? फिर की बणेगा? गात्रा पा के की बणेगा? अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्लां छड़ दियो, पर नहीं मानते फिर भी कहते आ गल क्यों, आ किवें, इहदा की लाभ है? पर सतगुरु कहते जे सारे जने एको ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन?

राग दे विच जो पूरी भिजी हुई कथा है जेड़ा भगती अते विराग है सिखी है जिदे विच ये पूर्ण रूप दे विच सिखी विराग भगती दे विच भिजी हुई कथा सुना रहे।

3 बजे 2:30 बजे के करीब 3 घंटे पहला सूरज चढ़न तो पहर रात होंगी या समय बद करिए 6 तो 9 सवेरे पहला पहर बन गया 9 तो 12 2 पहर कहने जिन्हों 12 तो 3 तीजा पहर हो गया 3 तो 6 चौथा पहर ये दिन दे पहर बने इसे तरह रात दे तो इनू जेड़ा है पहर रात रही कहते ने पहर रात रही 3 घंटे रात रही हो जो 2:30 बजे 3 बजे के करीब सर्दियां चलो 3 बजे हो गए गर्मियां 2:30 बजे हो गए इन्ना क समा तो परिपक्वता नाल निभावे इशनान करे फिर सुचम रखे संजम

0: स्वप्ते निसमय सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना किहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडितों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी जाए